नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 जुलाई महीने की 11 तारीख व दिन है शनिवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुद्ध बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री हेमंता सुरियारी और सुश्री शिका देका, मनपा में उद्घोषक श्री लुपसांग नुर्बू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किजांग लामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले

0: में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं।

0: जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुषोत्तम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायक नरेंद्र चंचल से चंद हिंदी देव गीत। श्रोताओं, लीजिए पेश है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गायक नरेंद्र चंचल जी के गाये चंद हिंदी देव गीत। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद ईदो मिश्मी आधुनिक गीतों का, संगम लिंगी और अतो के म्यूलो के आवाजों में यह गीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।
1: कल्याणे बहानेगा लुगे चाउ सिमी उदीचे, बयाने बहानेगा लुगे चाउ सिमी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे चंद इदू मिश्मी आधुनिक गीतों का, संगम लिंगी और ओतोके म्यूलो की आवाजों में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वोंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमती नुरबू ड्रमा जी द्वारा ग्रामीण महिलाओं से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की अपील। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: नमस्कार, मैं नुरबू ड्रमा वोंगामा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रेसिडेंट। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, वोंगामा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हूँ और सभी अमा से अनुरोध है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट हम अमाओं के लिए बहुत सारा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम अमाओं के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि घर का अमा मजबूत रहेगा, घर का

0: आत्मनिर्भर रहेगा तो पूरा घर आगे बढ़ेगा। अगर हर गांव में हर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के इस पे काम करेंगे, गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स आते हैं उसका फायदा उठाएंगे तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। और बहुत सारा प्रोग्राम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट ARS सलीम के द्वारा से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम आता है उससे आपको जानकारी देते हैं। तो इस जानकारी का फायदा उठा के गवर्नमेंट जो भी आपको लोन देने के लिए कोशिश कर रहा है उसको लेने के लिए कोशिश करे, और अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। और गवर्नमेंट आपको लोन दे रहे हैं, CLF, PLF, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तीनों पायदान के अंदर में अलग अलग PLF में लोन देते हैं, सेल्फ हेल्प में लोन देते हैं। तो इसके अंदर में जब हमारा यहाँ CLF बन जाएगा तो एक छोटा सा बैंक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा, तो कितना बड़ा सहयोग है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कितना बड़ा सहयोग है आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। गवर्नमेंट हर तरह से मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस मदद का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाता है कि पैसे के लिए हमको दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद हमको पैसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में एक सेविंग होता है, PLF में एक अकाउंट होता है, CLF में एक होता है, कहीं से भी आप मदद ले सकता है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो हमको बैंक में भी कई बार दौड़ना पड़ेगा, किसी के पास भी कहीं पैसे का कमी होगा लेने जाने से हमको कई बार जाना पड़ेगा, कई बार लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, आप लोन लीजिए, लोन से आप सही समय पर लोन को चुकाइए। आप 1 लाख लोन लेता है, आप सही समय में चुकाता है तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख लोन देगा, 2 लाख आप लोन लेके उसको चुकाता है तो गवर्नमेंट आपको 4 लाख लोन देगा। तो ये विश्वास, बैंक के साथ आपका अच्छा संबंध बनाइए, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऑफिसर्स के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में हमको क्या क्या स्कीम मिल सकता है जुड़िए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ARS डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या स्कीम आया हुआ है उनको पता होता है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में एक ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए उनसे जानकारी लीजिए। अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो डिपार्टमेंट में जाके पता लगाइए आपको किस चीज से सहायता चाहिए। सभी चीज का गवर्नमेंट हर समय हम अमाउंट को मदद करने के लिए तैयार है, तो उस मदद को लेने के लिए हमको कोशिश करना है, और मदद लेके जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सफाई के साथ में, अपना जगह का नाम कमाने के जरिए से आपको फैलाना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितना अमा है उन सब अमाओं से मेरा अनुरोध है कि इससे जुड़े रहिएगा, इससे बाहर जाने के लिए मत सोचिए, ग्रुप में रहने से ही फायदा है, क्योंकि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते लेकिन ग्रुप तो बहुत कुछ कर सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रमाणित करके दिखाया कि ग्रुप में रह के आप बहुत कुछ कमा सकती हैं, आप दुनिया देख सकती हैं, ये एक जरिया है, तो इस जरिया को आप फायदा जरूर उठाइए। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमती नुरबू ड्रमा जी द्वारा ग्रामीण महिलाओं से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की अपील। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं, दिल धड़कने दो फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में। जावेद अख्तर साहब के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: हमारा अगला गीत से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी यह संदेश।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तुमने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आनंद लेते हैं क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है अन्विता दत्त।

लैला मजनू फिल्म से आइए अब आनंद देते हैं अतीफ असलम और ज्योतिका टंगरी के युगल आवाजों में यह गीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है जॉय बरुआ ने।

लैला मजनू फिल्म के इस गीत के साथ ही नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं, दिल तो बच्चा है फिल्म से मोहित चौहान के आवाज में। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

दिल्ली 6 फिल्म से आइए बाना लेते हैं मोहित चौहान की आवाज में यह गीत। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, इस वक्त अपना ले रहा है कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए अब आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं हाईवे फिल्म से एआर रहमान की आवाज में यह गीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है स्वयं एआर रहमान ने।

नौटंकी साला फिल्म से आइए बाना लेते हैं फलक शबीर की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं स्वयं फलक शबीर तथा संगीतकार हैं मिकी।

दोस्ताना फिल्म से आइए बाना लेता है विशाल ददलानी की आवाज में यह गीत। अनविता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से आइए बाना लेते हैं विशाल मिश्रा, हंसिका पारीक और सचिन जिगर की युगल आवाजों में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं सोम तथा संगीतकार हैं सचिन जिगर।

दो पत्ती फिल्म से आइए बाना लेते हैं परंपरा टैंडोन की आवाज में यह गीत। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है सचित परंपरा ने।

अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से आइए बाना लेते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। कुणाल वर्मा के लिखे इस गीत को संगीत से सवाना है प्रसाद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आनंद लेता है। स्ट्रीट टू फिल्म से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार हैं सचिन जिगर।

रही टू फिल्म के इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरासिया और उस्ताद अमजद अली खान से बांसुरी वादन। श्रोता

श्रोताओं, कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरासिया और उस्ताद अमजद अली खान से बांसुरी वादन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियमवेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओकलैंड में भारत प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारत समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक तान्यांग कथक के मार्गदर्शन में स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप ने कई पान्योर जिले की निपको कॉलोनी में हाल में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी पारनाइक ने ईटानगर स्थित लोक भवन से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिला पुलिस अधीक्षक पंकज लाबा के नेतृत्व में ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आयोजित 3 सप्ताह के पुलिस इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम से स्वदेशी स्टील्ड फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब समाचार।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्व देशों के प्रभारी सचिव रुदेंद्र तंडर ने बताया है कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा भी मंजूर की गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: डिसीशन टू एलिवेट
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, सुरक्षा और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव

0: मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, सुरक्षा और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित है।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। दल द्वारा वर्षा और फ्लैश फ्लड से हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए कई पान्योर, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले का दौरा किया जा चुका है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अरुणाचल प्रदेश वर्षा एवं बाढ़ क्षति 2026 से संबंधित भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रारूप ज्ञापन की समीक्षा की। इस दौरान अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने निष्कर्षों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए क्षति आकलन तथा उससे संबंधित दस्तावेजों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव ने इससे संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे शेष आवश्यक जानकारी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं ताकि अंतिम एवं पूर्ण ज्ञापन अगले बुधवार तक भारत सरकार को भेजा जा सके। अरुणाचल प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक तान्यांग ताताक के मार्गदर्शन में स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप ने कई पान्योर जिले के निपको कॉलोनी में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस पहल का नेतृत्व भारत स्काउट्स एंड गाइड की राज्य प्रशिक्षित आयुक्त गाइड्स केम्पी पाकाम द्वारा किया गया। यह आर्थिक सहायता याचुली विधानसभा क्षेत्र के विधायक तोगो तातुंग को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल डायट केटी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में तथा दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों की स्पष्ट समझ और अधिक प्रभावी सुधारों और उत्तरदायी नीतियों का निर्माण संभव होता है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे संवेदनशीलता, सहानुभूति और समावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें ताकि सुशासन जनकेंद्रित रहे और प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। ईस्ट सियांग जिला पुलिस अधीक्षक पंकज लांबा के नेतृत्व में ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के सहयोग से 42 विद्यार्थियों के लिए आयोजित 3 सप्ताह के पुलिस इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुलिस व्यवस्था और औपचारिक न्याय प्रणाली की कार्य प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना, कानूनी जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शिता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम से स्वदेशी स्टिल्ट फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा है कि INS महेंद्र गिरी 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का

0: इस्तेमाल हुआ है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इसका बहुत ही सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रीलंका में इंग्लैंड पुनः सुने श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 से अजय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे से नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें व्यक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री शाह ने कहा है कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के जेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। आइए पहले जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जदन लरिम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्री तुप्तन ताशी और साथियों से छपर चौकी चवा शेदन। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर स्वास्थ्य से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे खंड्रो डोआ जांगमो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छोटन सिरिंग के साथ महिलाओं में होने वाली सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्याओं पर विशेष बातचीत। इनके साथ वार्ताकार होंगे सुश्री दुर्जी ड्रेमा। आज शाम 7:32 पर धुनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। इनमें पहला साज आप सुन पाएंगे अलबेला फिल्म से और इसके तुरंत बाद उनके धुन का आवाज का आनंद आप ले पाएंगे अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाजों में। और अंतिम साज और आवाज आप आनंद ले पाएंगे कल हो न हो फिल्म से। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमे तराने। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से सोनू निगम और नचिकेन चक्रवर्ती के युगल आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 12 जुलाई 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा।

दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पल्पू जंगचुप छोकरलिंग मठ जंग के कर्मा फुंसो और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद देंगे चंद बुगुन गीतों का संज्ञा मर्फ्यू और साथियों के आवाजों में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5वें सत्र के छात्र कुमारी तनसन छोटन से आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद देंगे राबदा फिल्म से अतीफ असलम की आवाज में, गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में, रॉय फिल्म से मीट ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर की आवाजों में, बागी फिल्म से मीट ब्रदर्स अरिजीत सिंह, रोचक किला खुशबू गरीवाल के युगल आवाजों में, ओम शांति ओम फिल्म से केके की आवाज में और आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4 बजे हमारा मासिक कार्यक्रम बाल जगत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे मंजूश्री विद्यापीठ के बच्चों से बाल विविध कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के संचालक होंगे श्री लोपसांग फेंडे। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे उस्ताद इमराद खान से राग। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे मुनफा कार्यक्रम नमथर लेरिम। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में। 5:35 पर मुनपा कार्यक्रम रिक्षुंग लरिम। शाम 6 बजे लरिम सडा। 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जदुन लरिम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे श्री तुप्तन ताशी और साथियों से चोइंगन पर जो कि सवा का शेष भाग, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे पद्मश्री महामहिम किनमे रिनपोचेला और अन्य भिक्षुओं से बेजर गुरु। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली। इनमें पहला कवाली का आवाना लेंगे बजरंगी बाईजान फिल्म से अदनान सामी की आवाज में, ताजमहल फिल्म से प्रीति उत्तम और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में, और अंतिम कवाली का आप आनंद ले पाएंगे इंडियन बाबू फिल्म से सबरी ब्रदर्स और जसपेंद्र नरुला के युगल आवाजों में। कल शाम 7:25 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि एच दुकुखाई के लिखे सिंधी भाषा में एक गीत का पाठ। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरूखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

당이도 두제 봉보실례제 디손 남례제메다 두마제 남제바니 치기기제 감시제

Nyamda

0: 毛
1: 啥
0: 问
1: 题？
0: 路线在线，真线线，地线寻宝寻多的，连年寻街追当着，地面满当没东西。

Yigi hanam

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री

0: Consulate in Vietnam are providing all possible assistance and are in close contact with the Vietnamese authorities. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venam, Prithika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-232 to Colombia in the final. In the FIFA World Cup, Norway will take on England while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मेरे वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है स्वस्थ से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे खंड्रो डुआ जांगमो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छोटन सिंह के साथ महिलाओं में होने वाली सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्याओं पर विशेष बातचीत। आज इनके साथ बातचीत कर रहे हैं सुश्री दुर्जी ड्रेमा।
2: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में है खंडो डोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटेन सिरिंग जी। डॉक्टर साहिबा, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: धन्यवाद
2: जी। तो श्रोताओं, जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर छोटेन सिरिंग जी को हमने पहले भी हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित की थी और इन्होंने उस दौरान कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में प्रसव पूर्व जांच यानी एंटीनेटल केयर से लेकर बच्चे के जन्म तक के हर वो जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। तो आज एक बार फिर जब एक गायनेकोलॉजिस्ट साक्षात हमारे साथ उपस्थित है तो हम इसकी भरपूर लाभ उठाते हुए आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि सामान्य गायनेकोलॉजिकल समस्या जो कि हर वर्ग की महिलाओं को हो सकती है। और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं पर जो कि 49 उम्र से कम हर महिला को हो सकती है। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें सबसे पहले बताइए कि मासिक धर्म अगर किसी महिला की सही तरह से सही समय पर नहीं आती है तो उनको क्या समस्या हो सकती है?
3: मेंस्ट्रुएशन जो हम बोलते हैं मेनार्की, वो मेनार्की जो पहली बार पीरियड्स आना वो 13 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं।
2: जी, जी।
3: अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, उनको 6 महीने से पीरियड्स नहीं आया।
2: हाँ।
3: अगर वो उनका एज 15 से ऊपर हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं होती है क्योंकि उसमें हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि पूरी तरह चेंजेस नहीं हुआ होता है तो उसमें कोई जनक नहीं होते। अगर उसके बाद अगर जिसको प्रियस ना आए 15 साल तक नहीं आए तो वो एक हम बोलते हैं उसको प्राइमरी एमेनोरिया, तो हमें जांचें करने होते हैं ताकि कोई कोई ऐसे महिला होते हैं जिसमें बच्चेदानी ही नहीं होते हैं तो उनको प्रियस कभी नहीं आएंगे,
2: नहीं आएंगे।
3: या उनके नीचे हिस्से जो वजाइना सर्विस वो ही डेवलप नहीं होता है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: तो ये भी कारण हो सकता है कि उनको पीरियड्स ना आए तो उसे हमें अच्छी तरह से जांच करना होता है किस कारण से नहीं आया।
2: तो अगर किसी के मेंस्ट्रुएशन जो है सही तरीके से नहीं आते हैं तो उनको क्या रोग होने की संभावना है, क्या डिजीज हो सकते हैं उनमें?
3: अगर किसी को पीरियड्स सही से नहीं आए, हो सकते है कि वो, अगर हम रूल आउट करें तो फर्स्ट कॉज हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, सेकेंड कॉज हो सकते है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जो कि हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं।
2: अच्छा, अच्छा।
3: पॉलीसिस्टिक पीसीओडी जो नॉर्मल महिला बोलते हैं पीसीओडी, तो वो उसका एक्रोनिम ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें एक हार्मोनल इंबैलेंस होता है, महिला प्रेजेंट करते हैं विद वेट गेन प्रेजेंट करते हैं और थोड़ा सा हेयर ग्रोथ होता है उनके शरीर में, ज्यादा हेयर ग्रोथ होता है, हिर्सुटिज्म बोलते हैं हम। और दूसरी उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होते हैं, हर 3 महीने वो ब्लीड करते हैं और कभी कभार वो 6 महीने तक ब्लीड नहीं करते हैं।
2: अच्छा।
3: और तीसरा सिम्टम्स वो पेशेंट ऐसे भी लेके आएंगे वेट गेन होता है और उनके जो ओवरी में काफी सिस्ट होते हैं वो, इसलिए हम उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और फ्यूचर में उन्हें यह रिस्क है कि अगर काफी समय तक उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया और उनकी अच्छी तरह से पीरियड्स नहीं आए तो फ्यूचर में उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बोलते हैं हम, या डायबिटीज होने की

0: चांसेस ज्यादा होते हैं टाइप 2 डायबिटीज या ये बच्चेदानी का कैंसर जो बोलते हैं हम एंडोमेट्रियल कैंसर, वो भी होने के चांसेस होते हैं।
1: जी जी, तो समय रहते अगर किसी को अपने जो मासिक धर्म जो है सही तरीके से नहीं आते हैं तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। जल्द से जल्द आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं, है ना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक स्त्री रोग से संबंधित मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जैसे कि इररेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग किसी के होते हैं, अगर किसी की पीरियड के समय नहीं है, मासिक धर्म के समय नहीं है, तो भी अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं?
0: अगर आप इररेगुलर ब्लीडिंग की बात करें तो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि बहुत सारे रसोली हो जो कि हम बोलते हैं फाइब्रोइड बोलते हैं, या बच्चेदानी में कुछ और प्रॉब्लम हो, एडिनोमाइटिक यूट्रस बोलते हैं, तो वो कॉज हो सकते हैं कि उनको इररेगुलर ब्लीडिंग होते हैं, समय से पहले ब्लीड होना, या दो पीरियड्स के बीच में ब्लीड होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड होते हैं, या पीरियड्स के दौरान काफी ब्लीड होना, मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, तो ये सब होने के चांसेस होते हैं, तो उसे समय रहते ही जांच करना होता है।
1: जी, और यूटीआई करके कई बार हमने सुने हैं, तो यूटीआई असल में क्या होते हैं, और जैसे किसी के एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं तो इसके क्या कारण होते हैं?
0: एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मली बात करें तो अगर हमारे वजाइना की पीएच देखते हैं तो वो एसिडिक मीडियम होता है, तो अगर कोई महिला उसे बार बार साबुन से धोए तो वो मीडियम चेंज हो जाता है। नॉर्मल हमारे वजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो उसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो दही में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वही बैक्टीरिया हमारे वजाइना में रहते हैं। अगर आपने कुछ साबुन या आजकल वी वास बहुत यूज करते हैं लोग, वो अगर आप यूज करते हैं तो वो उसका पीएच चेंज कर देते हैं, उसे अल्कलाइन मीडियम करा देते हैं, तो जो लैक्टोबैसिलस है वो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं वो एकदम कम हो जाते हैं, तो उसमें दूसरा बैक्टीरिया ओवरग्रोथ करते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया वजाइनोसिस बोलते हैं, या फंगल इन्फेक्शन जो बोलते हैं कैंडिडियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या ट्राइकोमोनस वजाइनलिस इन्फेक्शन होते हैं, उसमें अलग अलग के डिस्चार्ज होते हैं, जैसे अभी आप कैंडिडियल डिस्चार्ज इन्फेक्शन में उसमें थोड़ा सा जो व्हाइटिस डिस्चार्ज होगा वो थिक डिस्चार्ज होंगे और पेशेंट प्रेजेंट करेंगे बहुत ही नीचे एरिया में इचिंग होता है, और अगर बैक्टीरिया वजाइनोसिस की बात करें तो वो डिस्चार्ज बहुत ही थिन होते हैं और समय रहते ही ये सब इलाज करना होता है। अगर आपको ट्राइकोमोनस वजाइनलिस की इन्फेक्शन हो तो आपको हो सकता है कि आपको यूटीआई बार हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो, तो पहले ये इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है तो ही आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होगा।
1: जी जी, और एक होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई हम कहते हैं, तो ये क्या है और किसी को कब होते हैं?
0: सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो बोलते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एचआईवी है, सिफिलिस होते हैं, ट्राइकोमोनस वजाइनलिस होंगे, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। ये अगर कोई महिला बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस है। इससे बचाव कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो तो आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हो, तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि आप निरोध यूज कर रहे हो तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है।
1: जी, और जब चर्चा हमारी स्त्री रोग से संबंधित है, ये जो सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन होने लगे हैं लोगों में, जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है, तो सर्वाइकल कैंसर क्या है आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चेदानी या गर्भाशय के मुंह का कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। हर अगर आईसीएमआर के स्टेटस के हिसाब से देखे जाएंगे तो हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित रहते हैं। अब इसका एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो आपको दो एज में मिलते हैं ये सर्वाइकल कैंसर, अर्ली 30s और लेट 50s में देखा जाता है ये कैंसर। अगर पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे तो एक वायरस होता है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस होता है, वो मोस्ट कॉमन 99.7% HPV वायरस माना जाता है। अब किन लोगों में ये HPV वायरस या सर्वाइकल कैंसर दिखता है, जैसे कि कोई महिला बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं जो हम बोलते हैं हाई पैरिटी,
1: जी जी,
0: और दूसरी अर्ली एज में किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, और कोई महिला अपने हाइट और वेट में कुछ ज्यादा ओबेसिटी बोलते हैं, वो BMI ज्यादा होना, और तीसरा अगर कोई महिला स्मोकिंग कर रहे हो या तंबाकू खा रहे हो लंबे समय से, और कहीं स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो लॉन्ग टर्म आप जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो नॉट अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, जैसे लंबे समय तक आप 10 साल तक यूज कर रहे हो, जैसे कि जो हमारे फार्मेसी में मिलते हैं चॉइस के नाम से, तो आप लंबे समय तक खाओगे तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस है।

0: जी, तो ये तो रही सर्वाइकल कैंसर क्या है और किन उम्र के लोगों को हो सकती है। तो डॉक्टर साहिबा, आप मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है या हो रही हो, तो उसके जो लक्षण किस तरह से होंगे, हम कैसे पहचाने जा सकते हैं?
1: अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन जो होगा वो पेशेंट प्रेजेंट करेंगे असामान्य ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीड होते हैं, ठीक है। और वो पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट करेंगे जैसे हस्बैंड के साथ संबंध रखते हैं तो ब्लीडिंग होते हैं, तो हम उसे मेडिकल टर्म में पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। और तीसरा जो होता है, कोई महिला मेनोपॉज अटेंड करते हैं उसके एक साल बाद अगर ब्लीडिंग होते हैं, ये भी लक्षण रहता है। और जो नीचे के हिस्से में उन्हें हैवी हैवी महसूस होता है, मतलब भारीपन महसूस होता है। और दूसरा एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, मतलब थोड़ा सा बदबू सा डिस्चार्ज रहता है या आपको ब्लड भी निकलता है डिस्चार्ज के दौरान। तो काफी महिला में तो हमें एडवांस स्टेज में पता चलता है कि हाँ इन्हें कैंसर है।
0: जी, और इसकी कोई रोकथाम है या नहीं?
1: सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा मात्रा कैंसर है जिसका वैक्सीन अभी अवेलेबल है, जो कि हम HPV वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो HPV वैक्सीन, तीन प्रकार के वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल है, जो कि सर्वरिक्स के नाम से गार्डासिल, गार्डासिल 9, गार्डासिल। आपको जैसे HPV वायरस जो होता है, वो हाई रिस्क HPV वायरस होता है, वो 16-18 होता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो गार्डासिल 9, गार्डासिल, ये वैक्सीन कवर करते हैं। अब अगर हम देखा जाए टारगेट एज किन लोगों को ये वैक्सीन देना होता है, वो टारगेट एज ग्रुप है 9 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को ये वैक्सीन देते हैं। अगर कोई 9 to 15 एज ग्रुप में हो तो उसे मात्र 2 डोज इंजेक्शन दिया जाता है, 0 या 6 मंथ का डोज देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे मैरिड लोग हैं वो वैक्सीन नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, जैसे कि 26 से 45 एज तक भी यह वैक्सीन ले सकते हैं। बट इसका इफेक्टिव हम बोलते हैं वो कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी HPV वायरस से एक्सपोज हो चुके होते हैं।
0: और ये जो वैक्सीन के बारे में आपने बताया, क्या ये सरकार की ओर से सुविधा अभी तक है या नहीं?
1: नहीं, ये अभी पाइपलाइन के अंदर है पर अभी तक सुविधा नहीं है।
0: तो अगर किसी को लेनी है, जबकि मैं तो कहती हूँ इसे लगानी चाहिए
1: सभी को,
0: तो अगर लेनी है तो अपने से, जब तक सरकार की ओर से सुविधा नहीं आते तब तक आप खुद से लेकर इसे लगानी चाहिए, है ना?
1: जी।
0: और ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसकी स्क्रीनिंग कब करती है?
1: सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैप टेस्टिंग होते हैं या HPV DNA टेस्टिंग होते हैं, तीसरा कोर टेस्टिंग होते हैं, ठीक है, और चौथा जो होता है वाया विलाई बोलते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड और विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूकोसायडिन। अब ये 5 प्रकार के स्क्रीनिंग मेथड है। अब कौन सी उम्र में ये स्क्रीनिंग स्टार्ट करना है? अगर आप 21 ईयर्स ग्रुप में है, 21 से 65 एज ग्रुप तक ये स्क्रीनिंग चालू रहता है। अब 20 जैसे अगर आपने पैप टेस्टिंग किया हो तो उसे हर, अगर आपका लास्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो तो हर 3 साल उसे रिपीट करना होता है। अगर आपने कोर टेस्टिंग किया है, जो कि HPV DNA टेस्टिंग और पैप टेस्टिंग किया हो साथ में, तो उसे हर 5 नेगेटिव हो तो हर 5 साल रिपीट करना है। अब आपको ये स्क्रीनिंग कब स्टॉप करना है? अगर आप 65 इयर्स के हो और लास्ट आपके दो रिपोर्ट नेगेटिव आया हो तो आप ये टेस्ट स्टॉप कर सकते हैं।
0: तो ये स्क्रीनिंग अगर किसी को करनी है, कोई इच्छुक है, तो क्या ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही आनी है या फिर कहीं लैब में जाकर कर सकते हैं?
1: ये स्क्रीनिंग अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हम स्टार्ट किए हैं, जो पैप टेस्टिंग है वो हमने स्टार्ट किए हैं, पर अभी तक गवर्नमेंट थ्रू पैप टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए है।
0: जी जी जी। एक महिला को अपने जीवन और बेहतरीन करने के लिए कई बार जो है गर्भ निरोधक के उपयोग करते हैं लोग, तो इसमें कौन सी जो मेथड सही रहेगा? जैसे हमने सुना है कई तरह के होते हैं, जैसे IUCD या फिर कई टैबलेट्स होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या बताएंगे?
1: अभी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, मतलब 2 बर्थ स्पेसिंग कैसे रख सकते हैं, तो उसकी बात करें तो बहुत अनेक प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं, पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव किन लोगों में दे सकते हैं वो एक क्राइटेरिया रहता है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई महिला ऑलरेडी पीड़ित हो, मतलब कि उनको हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, तो हम उसे यूजली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं चॉइस बोलते हैं, वो अवॉइड कराते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस है, DVT होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर भी एक रिस्क होता है, तो ये भी होने के चांसेस है। और अगर हम आजकल हमारे हॉस्पिटल में PPIUCD डेट जो बोलते हैं, पोस्टपार्टम IUCD, जैसे ही बच्चा डिलीवरी हो जाए तो तुरंत, बच्चा डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाए तो हम तुरंत गोपर्टी डालते हैं, जो कि पोस्टपार्टम पोस्टमार्टम IUCD बोलते हैं, तो वो

0: उसका भी सुविधा पेशेंट ले सकते हैं।
1: बाकी सारे जो हैं ले सकते हैं, लेकिन जो टैबलेट है, जो महिला पहले से ही किसी रोग से पीड़ित है, तो जो टैबलेट जिसके नाम भी आपने बताए, तो उसे अवॉइड करने से सही रहेगा, है ना?
0: और दूसरा जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो आजकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अंतरा के नाम से आते हैं।
1: जी हाँ जी।
0: पर अंतरा का क्या साइड इफेक्ट है, वो एक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि महिला जो इंजेक्शन लेते हैं उसे हर 3 महीने आके इंजेक्शन लेना होता है। तो अगर उन्होंने हर 3 महीने इंजेक्शन नहीं लिया तो वो इस दौरान कंसीव होने के चांसेस है, और दूसरी बात उसे इंजेक्शन के दौरान इरेगुलर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं।
1: अच्छा जी। तो डॉक्टर साहिबा, आज फिर आपने एक बार हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और सामान्य गायनोकोलॉजिकल समस्याओं के बारे में हमारे श्रोताओं को कई सारी जानकारियां दी, तो मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे खंड्रोडोआ जांगमो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चोतन सिंह के साथ महिलाओं में होने वाली सामान्य स्त्री रोग संबंधी समस्याओं पर विशेष बातचीत, और आज इनके साथ बातचीत कर रहे थे सुश्री दुर्जी ड्रमा। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:25 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है दोनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पहला साज आइए आनंद लेते हैं अलबेला फिल्म से।

कल हो न हो फिल्म के इस गीत के साथ ही दोनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर भारत के लिए प्रस्थान किया। 4 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर दोनों नेताओं की उपस्थिति में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित भारतीय समुदाय का भव्य कार्यक्रम रहा, जिसमें 10,000 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विकास शर्मा ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल चायट के टी पारनाइक से मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने राज्यपाल को बैंक की कार्य प्रणाली, जनसंपर्क पहल, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों तथा राज्य के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। राज्यपाल ने समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधा राज्य के प्रत्येक गांव और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि लोग आसान और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सके। राज्यपाल ने ग्रामीण बैंक के विशेष रूप से उभरते उद्यमी, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, किसानों तथा ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने इन वर्गों को ऋण सुविधा, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। दल द्वारा वर्षा और फ्लैश फ्लड से हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए कई पान्योर, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों का दौरा किया जा चुका है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अरुणाचल प्रदेश वर्षा एवं बाढ़ क्षति 2026 से संबंधित भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रारूप ज्ञापन की समीक्षा की। इस दौरान अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों के निष्कर्षों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए क्षति आंकलन तथा उससे संबंधित दस्तावेजों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे शेष आवश्यक जानकारी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं, ताकि अंतिम एवं पूर्ण ज्ञापन अगले बुधवार तक भारत सरकार को भेजे जा सके। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिले में ऑल ताई खामती सिंगफो छात्र संघ द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मान समारोह 2026 में भाग लेते हुए उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने ताई खामती और सिंगफो समुदायों के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अमूल्य विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से अपनी पारंपरिक वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाते तथा उन्हें बढ़ावा देते हुए पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का आह्वान भी किया। उप मुख्यमंत्री ने समाज के उन गुमनाम नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें उचित सम्मान देने पर भी बल दिया, जिनके त्याग और दूरदृष्टि ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री न्याता दुकाम ने आज बंदरदेवा स्थित रंगों के मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। ये राज्य के औद्योगिकीकरण तथा मूल्य संवर्धित कृषि प्रसंस्करण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। उद्घाटन के बाद श्री दुकाम ने पार्क में स्थापित अत्याधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें रंगों के एनिमल फीड प्लांट तथा

0: विभिन्न साझा प्रसंस्करण केंद्र भी शामिल है। तवांग में आयोजित होने वाले 14वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2026 की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज तवांग स्थित सर्किट हाउस में प्रारंभिक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की सफलता के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक में आवास व्यवस्था, परिवहन, आयोजन स्थल की तैयारियां, सुरक्षा, आतिथ्य, कार्यक्रम प्रबंधन तथा प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा सहित विभिन्न लॉजिस्टिक और परिचालन संबंधी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों पाक्के केसांग, क्रादादी, कामले, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा और लोंगडिंग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi has concluded his two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे
1: आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमे तराने। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से सोनू निगम और नचिकेत चक्रवर्ती के युगल आवाजों में यह गीत। इस गीत के गीतकार है जावेद अख्तर तथा संगीतकार है ए आर रहमान।

सोनू निगम और नचिकन चक्रवर्ती के गाए इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमे तराने अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के महर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है हम किसी से कम नहीं फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। इस गीत की गीत रचयिता है मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीत संयोजन है राहुल देव।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नथाना पंजाब के हरजिंद्र चिड्डा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है धनवान फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर ने। इस गीत के गीत रचयिता है साहिर लुधियानवी तथा संगीत संयोजन है हृदयनाथ मंगेशकर।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है वदी खेरा पंजाब के मिंडू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है भाभी 1957 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। इस गीत की गीत रचयिता है राजेंद्र किशन तथा संगीत संयोजन है चित्रगुप्त।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मैदुंग के ताशी त्सोमू, पिम यांगजोम, गेंदन ड्रेमा, रिंचन जांगमो और ठिल्ले छोटनजी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है वारिस फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मनमोहन ने। इस गीत के गीत रचयिता है वर्मा मलिक तथा संगीत संयोजन है जगदीश।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुँच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। कृपया

0: जी प्रस्तुत है आज के कलाकार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस कार्यक्रम में कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि गीतों का सिलसिला अब जारी रहेगा। पेश है कार्यक्रम का सबसे पहला गीत।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने, हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवरा की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की श्रृंखला का अंतिम T20 मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक और पीथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। और इस मुकाबले के लिए एक तरफ चेकिया की कैरोलिना मुखोवा हैं, जबकि दूसरी तरफ लिंडा नोस्कोवा हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी आज इस खिताबी मुकाबले में भिड़ंत करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब से कुछ देर पहले पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवरा की जोड़ी ने खिताब पुरुष डबल्स का अपने नाम कर लिया है। उन्होंने आज फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मटे पाविक और अल सर्वाडोर के मार्सेले अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इससे पहले कल इटली के यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव ने विंबलडन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है, जहां कल इटली के यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव से होगा। कल सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के शानदार अभियान पर विराम लगाते हुए उन्हें 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर लगातार दूसरे विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी 24 साल के सिनर ने 39 साल के जोकोविच को सीधे सेटों में मात देकर एक बार फिर से उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। अब फाइनल में एक तरफ फ्रेंच ओपन जीत कर आ रहे ज्वरेव हैं, जिनके पास अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने का मौका होगा, जबकि दूसरी तरफ सिनर लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। सिनर ने विंबलडन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हरा कर जीता था। हार के बावजूद भी 23 वर्षीय आर्थर फेरी चर्चाओं का विषय रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान से शुरुआत करने वाले फेरी ने दमीर जुमहूर, ओटो विर्तानेन, जीजू बर्ग्स, ग्रिगोर दिमित्रोव और फ्लावियो कोबोली जैसे खिलाड़ियों को हरा कर अंतिम चार तक का सफर तय किया। वो लाइव रैंकिंग में 78 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 36वें रैंकिंग तक पहुंच गए हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि विंबलडन के इस ऐतिहासिक कोर्ट पर कई खिलाड़ियों ने खिताब जीते और कई खिलाड़ियों ने दर्शकों के दिल जीते। ऐसे ही खिलाड़ी रहे आर्थर फेरी, जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की, जहां फीफा विश्व कप में नॉर्वे का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला मियामी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से शुरू होगा, जबकि एक अन्य मुकाबले में सुबह 6:30 बजे गत विजेता अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कल स्पेन ने एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
3: 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का स्पेन का इंतजार खत्म हो गया है। स्पेन ने बेल्जियम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सेमीफाइनल का सफर तय किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहली सफलता मैच के 30वें मिनट में मिली, जब लैमिन यामल के शानदार रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस किया। बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ ने पहले डैनी ओल्मो का शॉट रोक लिया, लेकिन रीबाउंड पर फेवियन रुइस ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर स्पेन को 1-0 की

0: बढ़त दिलाई। हालांकि बेल्जियम ने स्पेन की बढ़त को बरकरार नहीं रहने दिया और मैच के 41वें मिनट में टिमोथी कोस्टिगेने के शानदार क्रॉस पर चार्ल्स डी केटलेयर ने हेडर की मदद से गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन की लगातार 6 क्लीन शीट का सिलसिला भी टूट गया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 86वें मिनट में मैदान पर आए स्पेन के मिकेल मेरिनो ने 2 मिनट बाद ही टीम के लिए विजयी गोल दागा और अंतिम 4 में टीम का स्लॉट फिक्स कर दिया। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना पिछले विश्व कप की उप विजेता फ्रांस से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फीफा भी अब अपने खिताब की दौड़ के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब रुक करते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जी हां, बिल्कुल 140 साल बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। खेल के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए थे। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। ऐतिहासिक मुकाबला कहा जा सकता है कई मायनों में। इस समय क्या स्थिति है भारतीय टीम की इस मैच में?
2: जी शक्ति, भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम पर इस समय 145 रन की बढ़त के साथ खेल रही है और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं। तो अभी तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। अगर भारत की पहली पारी की बात करें तो उनको शुरुआती झटके जरूर लगे थे, जिनमें शेफाली वर्मा और यष्टिका भाटिया के नाम शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप करी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 64 रन की। उसके बाद हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच 89 रन की साझेदारी हुई और फिर पुछल्ले बल्लेबाजों में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, इन दोनों ने 45 रन जोड़े भारत के लिए और एक मजबूत स्थिति में उनको खड़ा किया। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए थे और इसके अलावा जो जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको कोई भी मौका नहीं दिया। क्रांति गौड़ ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हॉल लिया और सिर्फ एक ही प्लेयर रही एमी जोन्स, जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया इंग्लैंड की तरफ से। कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 44 रनों का योगदान दिया था। तो इसके चलते इंग्लैंड की टीम जो है वो 170 रन पर सिमट गई थी और भारत को 115 रन की लीड मिली थी।
1: जी बिल्कुल, यानी 115 रन की बढ़त, और जब आप 285 रन बना करके इतनी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो वाकई आपका मनोबल ऊंचा होता है और कह सकते हैं कि मैच पर भारतीय टीम की पकड़ मजबूत है। वहीं इंग्लैंड में इस समय पुरुषों का टी20 मुकाबला भी खेला जा रहा है, जहां भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 14वें ओवर में एक विकेट पर 146 रन बना लिए थे। विशेष, जिस तरह की ये श्रृंखला गुजरी है भारत के लिए, क्या कहा जा सकता है? टीम श्रृंखला पहले ही गंवा चुकी है और अब सब कुछ आगे देखने के लिए होगा, जो कि एक दिवसीय श्रृंखला भी है।
2: जी बिल्कुल, भारत के लिए ये श्रृंखला जो है किसी बुरी सपने से कम नहीं रही है। आज हालांकि टीम में दो बड़े बदलाव हमको देखने को मिले हैं कि वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया है या उनको आराम दिया गया है। उन्होंने 3 मुकाबलों में 42 रन जोड़े थे। वहीं संजू सैमसन वापसी करते नजर आए और सूर्यांश सेडगे को जगह मिली है वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे। भारत पहले से ही 3-0 से श्रृंखला में पीछे चल रहा है। आज सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरी है भारतीय टीम और इसी के चलते उनको वनडे सीरीज के लिए जो अपना मोमेंटम है वो सेट करने के लिए देखेगी। भारत को इस सीरीज के तुरंत बाद 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेलेगी।
1: जी बिल्कुल, जहां पर टीम की उम्मीद होगी कि जब मैदान पे उतरा जाए तो एक नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा हो और टीम के साथ दर्शकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की वो जोड़ी भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां दूसरे देश की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में कई भारतीय मूल के खिलाड़ियों को स्थान मिला है।
3: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, ईश सोडी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिला।

0: इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष पहले भारत की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस दौर में मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था।
1: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझेदारी की अपार संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश खेल के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। इस दौरान श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत न्यूजीलैंड से रग्बी सीखना चाहता है।
1: भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं।
0: तो एक शानदार टीम है न्यूजीलैंड के पास रग्बी की, जिसका इस विश्व में शायद कोई ही सानी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न्यूजीलैंड में खेलों के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से बेहद प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेल तकनीक में साथ मिलकर काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं स्पेन के मैड्रिड का, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज प्रीतिका प्रदीप ने शानदार वापसी करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की तीरंदाज हजल बुरून को 145-142 से हराकर मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप में अपने करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप कांस्य पदक जीता है। उन्होंने इसके साथ ही एक ही दिन में भारत के लिए दो पदक जीतकर यादगार प्रदर्शन किया। प्रीतिका ने ज्योति सुरेखा वेनम और चिकिता तनिपार्थी के साथ मिलकर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस तरह कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का समापन दो पदकों के साथ किया। प्रीतिका को सेमीफाइनल में मलेशिया की फाती नूर फतेहा मतसालेह के खिलाफ 142-144 से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक मुकाबला खेलना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत में प्रीतिका दबाव में नजर आई। तुर्की की बुरून ने पहले ही दौर में लगातार 3 सटीक 10 लगाकर बढ़त बना ली और प्रीतिका 28-30 से पीछे हो गई। दूसरे दौर में उन्होंने 29-28 से बढ़त बनाकर अंतर कम किया और तीसरे दौर में तीनों तीरों पर सटीक निशाना लगाते हुए स्कोर 87-87 से बराबर कर दिया। अंतिम तीर पर उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 8 अंक की जरूरत थी, लेकिन प्रीतिका ने दबाव को मात देते हुए शानदार परफेक्ट 10 लगाया और अपने करियर का पहला विश्व कप कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सुबह खेले गए महिला कंपाउंड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की भारतीय तिकड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। कोलंबिया ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखते हुए भारत को 232-228 से हराया, जिससे भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब कल रिकर्व वर्ग में भारतीय तीरंदाजों के पास दो और पदक जीतने का मौका होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: सिर्फ तीरंदाजी के निशानों से ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से भी भारत को खुशखबरी मिली है, जहां एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने मोनाको डायमंड लीग में अपने डेब्यू ही लीग में ऊंची कूद में तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। अपने डेब्यू में ये कीर्तिमान रचने वाले सर्वेश पहले खिलाड़ी हैं भारतीय, और इसके साथ साथ वो सैलाइट क्लब में भी आ गए हैं, जहां नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर तथा विकास गौड़ा जैसे तमाम खिलाड़ी हैं। और अब चलते चलते एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं, जहां टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस समय 15वें ओवर में एक विकेट खोकर के 178 रन बना लिया है। वहीं महिला टीम ने इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और

0: अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दो जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्र

0: नंबर 8433452044 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों

0: में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine